बीबीसी दुनिया में आज देखिए कैसे सऊदी अरब की मुश्किल बढ़ा रहे हैं हूती विद्रोही। यमन में कब्जा कर आगे बढ़ते जा रहे हैं हूती विद्रोही। रेड सी के मोखा पोर्ट पर कब्जे के बाद बाबल मंदिर पर कर सकते हैं कंट्रोल। इस बीच सऊदी अरब को सता रही है कौन सी टेंशन, यमन में कब्जा कर आगे बढ़ते जा रहे हैं हूती विद्रोही। रेड सी के मोखा पोर्ट पर कब्जे के बाद बाबल मंदिर पर कर सकते हैं कंट्रोल। इस बीच सऊदी अरब को सता रही है कौन सी टेंशन, जानेंगे प्रोग्राम में। भारत आए रूस, चीन और ईरान के राष्ट्रपति। इन ताकतवर नेताओं की मुलाकात से क्या निकलेगी कोई खास बात, करेंगे बुलेटिन में बात। एंथ्रोपिक ने चेताया, हथियार बनाने के लिए एआई का मिसयूज होने का है खतरा। इससे पहले एक टॉप रिसर्चर ने किया था दावा, एआई बन सकता है सारे इंसानों की मौत की वजह। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं कीर्ति राजौरा। सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में उथल पुथल मची है। वहां से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीप स्ट्रेट पर मौजूद एक अहम आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये रेड सी के मुहाने पर मौजूद दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इससे पहले बताया गया कि पेरीम आइलैंड, जिसे मयून भी कहा जाता है, वहां पर मौजूद सऊदी अरब समर्थित सरकारी फोर्सेस पीछे हट गई थी। दरअसल गुरुवार को हूती विद्रोहियों ने रणनीतिक रूप से अहम पोर्ट सिटी मोखा पर कब्जा कर लिया था। अब

0: अब समेत दूसरे देशों का समर्थन मिला हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुखा पोर्ट पर कब्जे से पहले हुती विद्रोहियों की ओर से इस सिटी की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। उस तटीय शहर की ओर हुती बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हुई दिखाई भी दे रही हैं। यमन में विस्थापित हुए हजारों लोग फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका के बीच डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं। करीब 12 सालों से जारी संघर्ष के बाद यह देश दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस यमन के अंदर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन हमने वहां के भरोसेमंद और स्थानीय पत्रकारों के साथ मिलकर ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है।
1: फोन नेटवर्क खराब होने की वजह से अली अपनी पत्नी और बच्चों से संपर्क नहीं कर पा रहे। वो उत्तरी यमन में सऊदी सीमा के पास विस्थापित लोगों के अल महराबा कैंप में रहते हैं। इस इलाके पर ज्यादातर कंट्रोल ईरान समर्थित हुती मूवमेंट का है।
2: मेरे बच्चे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन युद्ध चल रहा है और रास्ता बंद है।
1: 8 साल पहले अली अपने परिवार से उस वक्त बिछड़ गए थे जब हुती मूवमेंट और यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के बीच चल रही जंग अचानक से बहुत तेज हो गई थी। इससे परिवार के सदस्य अलग थलग हो गए, कुछ एक हिस्से में रह गए तो कुछ दूसरे में। हुती विद्रोहियों की दखलंदाजी की वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अपना काम रोकना पड़ा है। इसके बाद कैंप में रहने वाले लोगों के लिए भरपेट खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ इन लोगों को अब डर लगने लगा है।
2: हर दिन हालात और खराब हो रहे हैं। किसी भी वक्त इस इलाके में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। उत्तर की तरफ से तोपों की गोलाबारी पहले ही हमारे करीब पहुंच चुकी है। मुझे डर है कि एक दिन मेरे और मेरे बच्चों के बीच की ये दूरी हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। मैं कभी उन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हर दिन मुश्किलें बढ़ रही हैं, भूख, गरीबी और ऐसा ठिकाना जो टूटता जा रहा है।
1: हाल के हफ्तों में कैंप के ऊपर सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है। हुती विद्रोहियों ने सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों पर पहले से कहीं ज्यादा भीषण बैलिस्टिक मिसाइल अटैक भी किए हैं। इन हमलों में आम लोग मारे गए और घायल भी हुए। हुती विद्रोहियों की एक मिसाइल इस शख्स के घर के पास गिरी। इसमें उनके परिवार के 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए।
3: कोई भी युद्ध नहीं चाहता। युद्ध से किसी देश, उसके लोगों या किसी और का भला नहीं होता। फायदा सिर्फ उन्हें होता है जो इससे कमाई करते हैं। आम लोगों के लिए सरकार, कानून और व्यवस्था सब कुछ टूट जाता है। फिर आपको हथियारबंद गुटों की दुनिया में जीना पड़ता है, जहां ये भी पता नहीं होता कि आपको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है।
1: लड़ाई अब पूरे यमन में फैल गई है। ये उन कई मोर्चों तक पहुंच गई है जो पहले युद्ध विराम के दायरे में थे। 4 हफ्तों तक मोखा पोर्ट पर मिसाइल हमले करने के बाद हुती लाल सागर के किनारे बसे इस शहर तक भी पहुंच गए। उन्होंने बाब अल मंदब स्ट्रेट में सऊदी जहाजों पर भी हमला किया। उनका आरोप है कि सऊदी अरब ने यमन पर नाकेबंदी लगा रखी है। लेकिन सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए तो यमन में बड़े पैमाने पर युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। हुती विद्रोही पहले ही जवाबी कार्रवाई की खुली धमकी दे चुके हैं।
4: मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यमन चुप नहीं बैठेगा। लाल सागर, अदन की खाड़ी या अरब सागर में अमेरिकी या इसराइली दुश्मन को रोकने की किसी भी कोशिश में हमारी सेनाएं शामिल हो सकती हैं। अगर इसके लिए सऊदी अरब या पड़ोसी देशों के अंदर मौजूद ठिकानों पर हमला करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
1: सऊदी अरब खुलकर कहता है कि वो यमन की सरकार का समर्थन करता है। उसका कहना है कि हुती मूवमेंट को ईरान से बड़ी मदद मिल रही है।
5: सऊदी अरब युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ईरान के लिए सौदेबाजी का जरिया भी नहीं बनने देगा। मेरी राय में जवाबी कार्रवाई हमले के स्तर पर निर्भर करेगी। ये कार्रवाई पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक और ज्यादा असरदार हो सकती है।
1: अली के पास अपने परिवार तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। उन्हें तस्करों की छोटी बोट से सफर करना होगा। ये बेहद खतरनाक यात्रा है। इसका खर्च उठाने के पैसे भी उनके पास नहीं और जरूरी दस्तावेज भी नहीं। बीबीसी संवाददाता फेराज गिलानी की रिपोर्ट।
0: और कल भारत में जुटेंगे एक साथ दुनिया के कई बड़े नेता। भारत मेजबान होगा और मेहमान कई देशों से होंगे। मौका होगा ब्रिक्स समिट का। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में शिरकत करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो लगभग 7 साल बाद भारत आ रहे हैं। तो रूस के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियां भी आए हैं। ये बड़ा नेता जो देश के हैं वो कई युद्ध में उलझे हुए हैं, उन्हें मिलाकर 11 देशों के नेता यहां होंगे। अब इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, संघर्ष गहरा होता हुआ दिख रहा है और दुनिया के तेल बाजार में भी उथल पुथल मची है और ऐसे में ये सम्मेलन हो रहा है। हालांकि अमेरिका ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है लेकिन उसका साया दिल्ली में इस समिट पर भी महसूस हो रहा है। ब्रिक्स दरअसल ये दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, BRICS, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें अब 11 देश शामिल हैं जिनमें सऊदी अरब, UAE, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया भी शामिल है। दुनिया की करीब आधी आबादी इन्हीं देशों में रहती है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की BBC संवाददाता राघवेंद्र राव से और सबसे पहले मैंने ये सवाल पूछा कि पीएम मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में क्या बातचीत हुई।
1: समिट तो कल से शुरू हो रहा है लेकिन उनका एक दिन पहले आना अपने आप में सांकेतिक है और ये बायलैटरल मीटिंग आज हुई है दोपहर में। बहुत गहरे मायने हैं क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो संबंध हैं और जो एक टाइज हैं वो कई दशकों पुरानी हैं। इन दोनों नेताओं के बीच में ये जो मीटिंग है ये काफी सिग्निफिकेंट है। जो भारत का विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके इस मीटिंग के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि बहुत सारे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है, जैसे कि राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है, आर्थिक मुद्दों पर बात हुई है, डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में कई दशकों से चलता आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं भारत रूस से डिफेंस सप्लाईज और डिफेंस इक्विपमेंट कई सालों से खरीदता आया है, उसके ऊपर बात हुई है, एनर्जी और स्पेस सेक्टर्स पे भी बात हुई है। लेकिन जो खास बात है आज की कॉन्वर्सेशन की वो ये है कि जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में दोनों नेताओं ने बातचीत की है। और जो MEA की प्रेस रिलीज है उसमें जो मेंशन किया गया है कि ब्लैक सी रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, ब्लैक सी कहा गया है, तो उससे जाहिर होता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में भी दोनों नेताओं ने चर्चा की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक बार दोहराया है राष्ट्रपति पुतिन को कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही दो ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स का हल निकाला जा सकता है।
0: मसूद पिज़िश्कियां के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और इसी के साथ कल उनकी शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात होने वाली है। इन दोनों ही नेताओं के साथ जो मोदी जी की मुलाकात है वो किस तरीके से देखी जाएगी?
1: देखिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो मसूद पिज़िश्कियां के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है फ्रीडम नेविगेशन को सुनिश्चित करने की जरूरत है और भारत के जो नाविक हैं जो उस इलाके में समुद्र में जहाजों पे भारत के सी फेयरर्स हैं उनकी सुरक्षा और उनका वेलबींग सुनिश्चित करने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पिज़िश्कियां से की हैं। आपने जिक्र किया शी जिनपिंग से मुलाकात का वाली है, 2019 के बाद पहली बार
0: 7 साल के बाद
1: जी राष्ट्रपति शी भारत आ रहे हैं और 2020 में पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो गलवान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों देशों के बीच में भारत के 20 सैनिक उसमें मारे गए थे और उसके बाद हमने देखा एक लगातार ढलान पे ये रिश्ता भारत और चीन का जाते हुए दिखा। लेकिन मेरा मानना है कि जब आखिर में एक कोई जानकारी दी जाएगी उस मीटिंग के बारे में या कुछ स्टेटमेंट बाहर आएगा उसमें शायद सीमा विवाद के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी जाएगी क्योंकि ज्यादा दोनों देश जो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे वो ये है कि वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कितना कर रहे हैं और अपना ट्रेड कितना बढ़ाना चाह रहे हैं।
0: और अब रुख AI की खबरों की तरफ। एंथ्रोपिक ने कहा है कि उसने अपने AI मॉडल के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ गलत एक्टिविटीज की कोशिश की पहचान कर ली है और उन्हें रोक भी दिया है। इसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल वेपन बनाने की मदद के लिए किया जा सकता है। गूगल ने भी कहा है कि एक शख्स ने उसके AI टूल जेमिनाई का इस्तेमाल कर ऐसे जैविक एजेंट तैयार करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल गाइड हासिल करने की कोशिश की थी जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं। एंथ्रोपिक की हालिया थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उसके AI मॉडल क्लॉड का इस्तेमाल करने वालों में रूस से जुड़े साइबर जासूस और एक ईरानी प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन भी है। AI रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों ने भी इंसानों के लिए इस तकनीक के संभावित खतरे को लेकर चिंता जताई है। देखिए BBC संवाददाता

0: चैटबॉट आईडी की ये रिपोर्ट।
1: मशहूर चैटबॉट क्लॉड की कंपनी एंथ्रोपिक के एक टॉप एआई साइंटिस्ट का मानना है कि अगले एक दशक में इस बात की संभावना 10% से ज्यादा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इंसानों की मौत की वजह बन सकता है, और एक्स पर उनकी इस पोस्ट को करोड़ों लोगों ने देखा है। लेकिन ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब एंथ्रोपिक के एक और एआई रिसर्चर ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जेकब कॉक्सन ने एक्स पर लिखा कि ये कंपनियां सीधे सेल्फ इम्प्रूविंग सुपर इंटेलिजेंस की तरफ दौड़ रही हैं और हमारी जिंदगी को दांव पर लगा रही है। हालांकि एआई को लेकर इस तरह की विनाशकारी चेतावनियां नई नहीं है। कुछ स्पेशलिस्ट और कई मशहूर एआई वैज्ञानिक कई सालों से इस तरह की आशंका जताते रहे हैं।
2: हमने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। ये कहना बेवकूफी होगी कि इसकी संभावना सिर्फ 1% है।
3: सैकड़ों रिसर्चर्स ने इस ओर इशारा किया है कि अगर ऐसी सुपर इंटेलिजेंट एआई बना लेते हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल खत्म हो सकता है। हमने एक के बाद एक ऐसे मामले देखे हैं जो ओपन एआई, मेटा और एंथ्रोपिक की बनाई एआई बोट्स अपने कंट्रोल से बाहर हो गई।
4: हमें अपने बैंकों, फाइनेंशियल सिस्टम्स, अस्पतालों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स की साइबर डिफेंसेस को बेहतर करना होगा। इन सभी को अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। हमें हाल ही में ये भी पता चला है कि ओपन एआई के मामले में कुछ एआई एजेंट्स ने जानबूझकर अपनी ट्रेनिंग के खिलाफ काम किया। उन्हें पता था कि वे जो कर रहे हैं वो अनएथिकल था।
1: ओपन एआई का कहना है कि उसने काफी समय, पैसा और एक्सपर्टीज इस बात में लगाया है कि उसके लेटेस्ट बॉट्स इस चीज के साथ अलाइन हो कि इंसान क्या चाहते हैं। लेकिन इन मामलों को देखते हुए कुछ खास एआई रिसर्चर्स की एक्स पर की गई इन पोस्ट ने चिंता बढ़ा दी है, और कुछ लोग जिनमें ब्रिटेन के नेता भी शामिल हैं अब किसी तरह के कानून की मांग कर रहे हैं ताकि सुपर इंटेलिजेंट एआई के विकास को कुछ समय के लिए रोका जा सके।
0: अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों के 25 साल पूरे होने पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हालांकि ये समय आमतौर पर गंभीरता से याद करने का होता है, लेकिन इस साल का कार्यक्रम अमेरिका में बंटवारे वाली राजनीति में उलझ गया है। कुछ लोगों ने मांग की है कि न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर जहरान ममदानी ग्राउंड जीरो पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल न हो। मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि मुस्लिम अमेरिकी को अब तक के सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। देखिए बीबीसी संवाददाता नदा तौफीक की रिपोर्ट।
5: ये वो जगह है जहां आधुनिक दौर में अमेरिकी सरजमी पर सबसे बड़ा विदेशी हमला हुआ। वादा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और मेमोरियल दोबारा बनकर खड़ा होगा और कुछ भुलाया नहीं जाएगा। वादा पूरा हुआ। आज की सबसे युवा पीढ़ी के लिए 9/11 की घटनाएं इतिहास की बात हैं, लेकिन जो इससे गुजरे उनके लिए ये ऐसा दर्द है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के हाईजैकर्स ने कमर्शियल प्लेन्स को 110 मंजिला ट्विन टावर से टकरा दिया। उस दिन करीब 3,000 लोगों की मौत हुई। बाद में मलबे से उनके शव निकाले गए। पीछे छूटी धूल के जहरीले गुबार में सांस लेने की वजह से आने वाले सालों में और हजारों लोगों की जान जाएगी। उस दिन ने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लोगों की जिंदगियों के साथ साथ घरेलू और विदेशी नीति बदली। अमेरिकी मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। 25 years on. ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक 9/11 के बाद इन 25 सालों में मुस्लिम अमेरिकियों के खिलाफ भेदभाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। न्यूयॉर्क में पहली बार एक मुस्लिम मेयर हैं, जो अच्छा संकेत है, लेकिन दक्षिणपंथी नेताओं की तरफ से मुस्लिम समुदाय को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने के मामलों में भी इजाफा हुआ है। 9/11 के वक्त न्यूयॉर्क के मेयर रहे रूडी जुलियानी को न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर जहरान ममदानी को लेकर इन टिप्पणियों के लिए हाल ही में आलोचना का सामना करना पड़ा।
6: They want to dominate us.
7: वो हम पर हावी होना चाहते हैं। उन्हें अपनी कट्टरपंथी मजहबी तालीम शुरू करने के दिन से यही सिखाया जाता है। ममदानी साफ तौर पर इसके समर्थक हैं। वो जिन भी मुसलमानों का समर्थन करते हैं वो सभी हत्यारे हैं।
5: जीशान, जिनके भाई सलमान हमदानी की मौत नॉर्थ टावर में हुई थी, उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी उस दिन के दर्द को और बढ़ाती है।
8: I have 3 kids. It's more painful.
9: मेरे 3 बच्चे हैं। अब ये और ज्यादा दर्दनाक है।
8: I've explained to my kids.
9: क्योंकि मुझे अपने बच्चों को इस्लाम के लिए नफरत के बारे में समझाना पड़ा है।
8: Of Islam.
9: 9/11 के हमलावरों ने मजहब को हाईजैक कर लिया था, है ना? और टावरों पर भी हमला किया। मैं कहता हूँ

0: कि अब हमारे देश में लोगों के बीच फूट डालने के लिए इस्लाम को हाईजैक किया जा रहा है। आपको इससे बेहतर होना होगा। मेरे भाई ने अपनी जान दे दी, वो एक मुस्लिम है। क्या अब सिर्फ इसलिए उनका नाम वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक मुस्लिम है?
1: जिस दिन अमेरिका को एकजुट होना था उस दिन भी मतभेदों को खत्म करना मुश्किल साबित हो रहा है। न्यूयॉर्क से बीबीसी संवाददाता नदा तौफीक की रिपोर्ट।
2: और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही।
3: ਸੁਨੇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ
4: इंग्लिश
2: हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच भी गलबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
4: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
2: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
4: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
2: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
5: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव

0: देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7 to 8 PM, संडे 1 to 5 PM।
1: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA applications, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा महारत रखता है। तो हॉडी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों और इंद्रजोत कौर ढिल्लों एक छत हेठ इमिग्रेशन इंश्योरेंस दीयां सेवावां प्रदान करते हैं। सानू संपर्क करने लई 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड,
2: रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट।
1: 403-225-1111.
0: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: Dosto, namaskar. दुनिया की धुरी इस वक्त ईरान है। ईरान के साथ चीन और रशिया के आर्थिक संबंध हैं, सामरिक संबंध हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा है। भारत इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने जो संकेत दिए वो संकेत संभवतः 2024 में, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने नहीं गए थे बल्कि उस वक्त अमेरिका में चुनाव हो रहा था, तब की ब्रिक्स की बैठक में जो सवाल ब्राजील उठा रहा था, जिन सवालों पर सहमति रशिया दे रहा था, उस पर पूर्ण सहमति भारत भी दे रहा था, साउथ अफ्रीका भी दे रहा था, चीन बीच के रास्ते को निकालकर अपने ट्रेड को देख रहा था, वो सवाल ट्रंप के आने के बाद हर देश ने खामोशी बरत ली, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी इकोनॉमी को लेकर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी। लेकिन अब तो ईरान ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है, वो चाहे तो उन मुद्दों को उठा सकता है, वो चाहे तो ब्रिक्स के साझीदार देशों के साथ कोई भी नया संबंध बनाने की दिशा में हाथ बढ़ा सकता है। और इस वक्त ब्रिक्स की बैठक भारत की अगुवाई में हो रही है और भारत के संबंध इसराइल के साथ हैं और इसराइल खुले तौर पर ईरान के ना सिर्फ खिलाफ है बल्कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के मद्देनजर वह ईरान को भी पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहता है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। तो क्या यह ब्रिक्स की बैठक चाहे अनचाहे ईरान के जरिए उन बातों को उठाई जा रही है जिन बातों को लेकर रूस और चीन खामोशी बरत रहे हैं? ब्राजील ने भी चुप्पी साधी हुई है, भारत ने तो खुद को दरकिनार कर लिया है ये कहते हुए कि उसकी ट्रेड डील अमेरिका के साथ होगी। और सही मायने में वेस्ट एशिया से जैसे ही आप एशिया में प्रवेश करते हैं, यानी यूरोपीय कंट्रीज के बाद एशिया में प्रवेश करते हैं, तो जो साउथ ग्लोबल का पूरा संकट है उसमें भारत उसकी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन क्या बिना ईरान के यह संभव है? और खास तौर से तब जब समूची दुनिया ने देख लिया कि चीन और रशिया खुले तौर पर ईरान के साथ खड़े हैं, दुनिया ने खुले तौर पर देख लिया जो यूक्रेन छोटा सा देश उसने रशिया को थका डाला है, नाटो कंट्रीज और अमेरिका के बीच लकीरें खिंच गई, नाटो कंट्रीज को अपनी सुरक्षा का बजट बढ़ाना पड़ रहा है, आर्थिक संबंध भी यूरोप और अमेरिका के बीच डावाडोल हो गए। तो क्या इन तमाम परिस्थितियों के

बीच में अगर ईरान भारत को कोई ऑफर करता है तो इसके मतलब मायने ईरान की पैनी नजर इस वक्त उस अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को लेकर है जिसमें रशिया और चाइना और ईरान और फिर इन सब के बीच जो नया समझौता बना है सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान को लेकर और उसमें रशिया ने मक्का समझौते का जो जिक्र कर दिया है, क्या ये सारे घटनाक्रम भारत के सामने एक चुनौती के तौर पर हैं या भारत इन चुनौतियों को देखकर आने वाले वक्त के लिए अमेरिका के साथ कोई बड़ी बार्गेनिंग करेगा? पता नहीं उस दिशा में भारत के कदम ट्रेड डील तक कब तक जाते हैं, ट्रेड डील कब तक थम जाएगी, लेकिन उससे पहले की हकीकत कहीं बड़ी है। ईरान ब्रिक्स में शामिल होता है और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, वो चाहता है उसके पास परमाणु हथियार आ जाएं। और इस पर बिना देर सवेर किए नेतान्याहु यानी इसराइल मुहर लगाता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं तो ये सही है। और इन सब के बीच वॉल स्ट्रीट जनरल एक बड़ी खबर छाप देता है कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध अमेरिका लड़ रहा है उसका अंत देर सवेर नहीं होगा, बल्कि ट्रंप जब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। और वॉल स्ट्रीट जनरल जिस बात का जिक्र करता है उसमें वह उस मीटिंग का जिक्र करता है जिसमें ट्रंप प्रशासन के प्रशासनिक बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी है, जेडी वेंस यानी उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है, मार्को रूबियो यानी अमेरिकी विदेश मंत्री की मौजूदगी है। और जब यह सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा जाता है कि उस बैठक में यह कहा गया कि 2029 तक यह युद्ध चलता रहेगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे सिर्फ एक मीटिंग भर के सिलसिले को लेकर हवा में उड़ाने की कोशिश की। लेकिन ब्रिक्स की बैठक के भीतर ईरान ने उस पूरी लकीर को खींच डाला यह कहकर कि अब दुनिया बदल रही है, तमाम देश सोच लें, और चूंकि भारत अगुवाई कर रहा है तो भारत को सोचना होगा। और भारत के लोग जो इस युद्ध के दौर में ईरान के साथ खड़े थे उनका वो शुक्रिया अदा करता है। और ये एक हकीकत है, भारत के विपक्ष के राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि इस देश के भीतर ऐसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल तौर पर अपनी पहचान को रखते हैं वह भी ईरान की एम्बेसी में उस वक्त गए जब ईरान की पूरी कैडर या कहें मिलिट्री कैडर और वहां के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कुछ कहा या नहीं कहा या फिर इसराइल के साथ प्रगाढ़ संबंधों के मद्देनजर भारत की राजनीतिक सत्ता ईरान के छोड़कर इसराइल के साथ खड़ी रही, इस बात के जिक्र तले अब तीन बातों को समझ लीजिए। ईरान भारत में आकर खुले तौर पर कह रहा है कि अब यह समझना होगा हमें अपनी राष्ट्रीय करेंसी में व्यापार करना चाहिए। जी याद कीजिए 2024 में जब रशिया में ब्रिक्स हो रहा था उस वक्त ब्राजील ने सबसे पहले यह सवाल उठाया था, लूला ने, पुतिन की सहमति थी, साउथ अफ्रीका की सहमति थी, प्रधानमंत्री मोदी की भी उस वक्त सहमति थी, चीन ने भी कहा था हां हम चाहते हैं कि नेशनल करेंसी जो आपस में रहे उसमें हम अपने बायलेटरल ट्रेड को तो करते ही हैं। अमेरिका ने उसके बाद धमकी दी डी डॉलराइजेशन की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे। ईरान ने खुले तौर पर ऑफर कर दिया कि अब राष्ट्रीय करेंसी में व्यापार करना होना चाहिए। यह बात रशिया और चीन ने नहीं की लेकिन परमानेंट सदस्य के जरिए कहलवा तो दी, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ दुनिया के दो बड़े देश जो व्यापार कर रहे हैं उसमें एक चीन है और दूसरा रशिया है। दूसरी बड़ी बात है कि इस दौर में, मुश्किल दौर में पूरी दुनिया जरूर है, लेकिन सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध जो अमेरिका ने ईरान पर लगाया है, ईरान ने खुले तौर पर ना सिर्फ उसको खतरनाक बतलाया बल्कि यह भी कह दिया कि इसके बाद का संकट सिर्फ एनर्जी क्राइसिस पर नहीं है, यह खाद्य संकट भी होगा, यानी अनाज पर भी असर पड़ेगा क्योंकि फर्टिलाइजर की आवाजाही इस दौर में कम हो गई है पूरी दुनिया के लिए, और यह एक मौलिक अधिकार लोगों का होता है, तो अमेरिका

0: उस पर हमला कर रहा है। बातचीत दो स्तर पर होती है, एक स्तर होता है सीधे राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और दूसरे स्तर में जो विदेश मंत्रालय और बाकी अधिकारी, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारी हो या बिजनेस डील करने की दिशा में हो, उसमें खुले तौर पर ईरान अगर ये ऑफर कर रहा है कि देखिए हमने तो बतला दिया अमेरिका को कि आप सुपर पावर नहीं हैं, आप किसी भी देश को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, और इस वक्त अमेरिका लगातार जो भी प्रयास कर रहा है ईरान जवाब दे रहा है, तो फिर भारत को किस बात का डर है? भारत अगर साथ खड़ा हो जाए तो भारत की तरफ जो आंख दिखाएगा उसकी आंख की तरफ हमारी हाथ, हमारे हाथ बढ़ जाएंगे। यह मैसेज बड़ा है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मद्देनजर जो व्यापार के रूट्स हैं, जो होमर्ज का रूट है जहां से बड़ी तादाद में खाड़ी देशों से एनर्जी सप्लाई होती है, अगर वो हमारे हिस्से में आता है तो फिर हम उसमें किसे इजाजत दें किसे नहीं दें, यह भी हम देखेंगे। और हमारे साथ जो खड़ा होगा उसको जाहिर तौर पर रियायत सुविधाएं मिलेंगी। और अमेरिका कह रहा है अगर आप उस दिशा में गए तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। यह भारत को सोचना है। चबाहार में बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है पोर्ट को लेकर, उस पोर्ट को लेकर भारत इसलिए बड़ा क्योंकि रास्ते में पाकिस्तान ना पड़े, सीधे चबाहार से भारत के पोर्ट जुड़ते चले जाएं। उस दिशा में काम भी शुरू हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्शंस भी किए गए जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अमेरिका ने उस पर रोक लगा दी। भारत को सोचना होगा। यानी आर्थिक परिस्थितियां, एनर्जी की परिस्थितियां, आने वाले वक्त में खाद्य सुरक्षा की परिस्थितियां, नेशनल करेंसी को महत्व देना, डॉलर के काउंटर में एक पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा करना, सैन्य कार्रवाई जिस तर्ज पर होती है उसको रोकने की दिशा में बढ़ना, प्रतिबंध किसी भी देश में अमेरिका लगा देता है उसको आपको समझना होगा। और ईरान को प्रतिबंध से इस दौर में जो संकट काल में ढकेलने की कोशिश की गई है, इसका यह मतलब कहीं नहीं है कि आप ईरान के कारोबार को रोक सकते हैं। हमारा कारोबार चल रहा है, तो किसी भी देश के कारोबार को अमेरिका रोक नहीं सकता है। बैकग्राउंड में अगर ईरान इन बातों का जिक्र भारतीय अधिकारियों से खुले तौर पर कर रहा है तो मैसेज बहुत साफ है कि एक नई स्ट्रेटजी ब्रिक्स के जरिए निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, लेकिन भारत सोचे। क्योंकि इसी दौर में अमेरिका ईरान पर यह कहकर अटैक कर रहा है और दुनिया के भीतर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि दरअसल ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति क्या यहां पर कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो यहां पर कह रहे हैं उस वक्त अमेरिका के भीतर और इसराइल के भीतर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमें लगता है पहले बात वहां से शुरू होनी चाहिए।
1: You are the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. Will never ever have a nuclear weapon.
2: Well, I think it's very easy to explain to America. All you have to do is say, will you let Iran have a nuclear weapon? And the answer is no. And they're doing very poorly. Their country is in shambles right now.
0: अगर ध्यान दीजिए तो हफ्ते भर के भीतर ईरान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में अलग से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पूछा गया भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर आप क्या कहेंगे, तो रूबियो ने खुले तौर पर भारत को खबरदार कह दिया था और कहा था खबरदार, आप किसी भी हालत में ईरान के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं बनाएंगे। और अगला सवाल यह है कि ईरान के राष्ट्रपति जब ईरान से उड़ान भरते हैं तो खुले तौर पर यह कहकर उड़ान भरते हैं कि दरअसल जो बैंक बनाया गया है ब्रिक्स बैंक, उसको तो बनाया ही इसलिए गया क्योंकि एक पैरेलल करेंसी डेवलप की जाए और आपस में अपनी करेंसी के जरिए व्यापार हो। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस दौर में चीन युआन, रशिया रूबल दोनों के बीच आपसी करेंसी की डील हो रही है, रुपया और रूबल दोनों के बीच इस रूप में हो रही है और डेवलप। अब उस पैसे को क्या भारत के शेयर बाजार में रशिया

का देगा, और जो रूबल भारत के पास है उसको लेकर क्या वो रशिया की इकोनॉमी के साथ जुड़ेगा या कुछ इन्वेस्टमेंट वहां करेगा और वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा? आज बातचीत इस पर जरूर हुई, लेकिन हमने शुरू में ही कहा केंद्र में इस वक्त ईरान है, और ईरान के राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो इस बात का जिक्र खुले तौर पर होता है कि सहमति हो या ना हो तो भी संवाद रुकना नहीं चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ना सिर्फ बिजनेस फोरम में बल्कि मुलाकात में भी कहते हैं कि ब्रिक्स की भूमिका बेहद अहम है, भारत की भूमिका और ज्यादा अहम है, क्योंकि ब्रिक्स के तमाम देश इस वक्त अमेरिका को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके समानांतर या उसके खिलाफ खड़े हैं। भारत तमाम देशों के साथ संबंध बनाए हुए है, यह एक अच्छी बात है। भारत अपने देशों के जरूरतों को देखकर, अपने देश के नागरिकों की जरूरत को देखकर पहल करता है, लेकिन ईरान के साथ उसके रिलेशन हिस्टोरिक है। उन रिलेशन को छोड़कर क्या दूसरे रास्ते को भारत पकड़ सकता है? यहां जिक्र इसराइल का नहीं है, क्योंकि इस संबंध के बीच में यह भी एक हकीकत है कि दूसरी तरफ अमेरिका या कहें वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की धड़कनें इसलिए बढ़ी है, इसराइल या नेतान्याहू की धड़कनें इसलिए बढ़ी है क्योंकि दोनों जान रहे हैं इस युद्ध के जरिए उनकी अपनी राजनीतिक सीमाएं भी तय हुई है और राजनीतिक विस्तार भी तय हुआ है। नवंबर के बाद नेतान्याहू चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसको लेकर इसराइल के भीतर असमंजस की स्थिति है। मिड टर्म पोल जो अमेरिका में नवंबर में होना है उसको लेकर ट्रंप खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि कांग्रेस में संख्या उनके खिलाफ बढ़ जाए, इस युद्ध को रोक दिया जाए तो ऐसा होगा नहीं। यानी इलेक्शन में ईरान केंद्र में आकर अमेरिका में भी खड़ा हो गया है, और शायद इसीलिए जब वॉल स्ट्रीट ने आज यह रिपोर्ट छापी कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी ये जिक्र कर रहे हैं कि अब यह युद्ध चलते रहेगा और ईरान के साथ संघर्ष ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत तक जारी रह सकता है, जो कि साल 2029 तक लगभग तय है, और यह आकलन युद्ध को जल्दी खत्म होने के जो अंदेशा ट्रंप बता रहे हैं उससे बिल्कुल हटकर है। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो फिर दिल्ली की ब्रिक्स की बैठक में ईरान के राष्ट्रपति चूके नहीं इन हालातों को बताने से। यानी चाहे अनचाहे ये ब्रिक्स की बैठक तो हो रही है, लेकिन अंग्रेजी की जो कहावत है बिग एलिफेंट इन रूम, यानी अमेरिका और इसराइल की मौजूदगी ईरान के जरिए इस ब्रिक्स के भीतर समाई हुई है, और इसका एहसास बाखूबी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को भी है और शी जिनपिंग जो कल मुलाकात करेंगे उनको भी है, और सही मायने में ब्रिक्स के तमाम देशों को भी है और भारत को भी है। इसीलिए ब्रिक्स की बैठक के ठीक समानांतर अमेरिका की प्रतिक्रिया या इसराइल की प्रतिक्रिया ईरान को लेकर खुले रूप में इसलिए आ रही है क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रिक्स अगर कोई फैसला कर लेता है, कोई डिक्लेरेशन बड़ा इस बैठक से निकल जाता है जो कम से कम एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो, करेंसी को लेकर हो, या फिर सामरिक परिस्थितियों में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को लेकर हो, या फिर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा, या नहीं बनाने की गारंटी वह ब्रिक्स में दे रहा है इसको लेकर हो, या यूनाइटेड नेशन के भीतर रिफॉर्म की स्थिति में अमेरिका की जो दादागिरी यूनाइटेड नेशन तक में चलती है उसको लेकर हो, नहीं चाहता है कि ऐसी कोई डिक्लेरेशन दिल्ली से निकल कर आए। अमेरिका एक संकेत यह भी देता है कि दरअसल उन तमाम बातों पर गौर मत कीजिए जो बातें निकलकर आ रही है, यानी आपसी संबंध भारत और रशिया के बीच अच्छे हैं, चीन और भारत के बीच भी अच्छे हैं, लेकिन भारत ईरान के पक्ष में ना जाए इसको लेकर वो खुलकर कहते हैं। टैरिफ बढ़ा चुके हैं, टैरिफ और बढ़ा देंगे, प्रतिबंध भी लगा सकते हैं अगर ईरान के साथ गए। रशिया के साथ टैरिफ बढ़ाया था लेकिन फिर रियायत भी दे दी। चाइना से सामान खरीदते हैं।

खरीदी है, लेकिन अमेरिका को तरजीह देना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी में अब वेंजुला से तेल आपके पास आएगा, आप उस दिशा में कदम देखिए, आप रशिया से कम कीजिए। इन तमाम बातों का जिक्र और इसमें डिफेंस डील का भी जिक्र, इसीलिए यह सवाल है क्या रशिया के साथ जिस डिफेंस डील की दिशा में भारत बढ़ना चाह रहा है उसमें अमेरिका क्या रोक लगाएगा और ट्रेड डील के साथ उसे जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या वाकई ईरान अमेरिका की राजनीतिक दायरे के भीतर भी अब इस तर्ज पे खड़ा हो गया जब खुद सवाल पूछा गया अमेरिकी राष्ट्रपति से, यह युद्ध लगता है 2029 तक चलेगा और वॉल स्ट्रीट जनरल ने यह खबर छाप दी है और आप और आपके अधिकारी और आपके उपराष्ट्रपति और आपके विदेश मंत्री इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रहती है।

0: हकीकत को जानता है कि तीन देश उन तीन देशों के साथ भारत के संबंध दरअसल ना सिर्फ ट्रेड बल्कि आने वाले वक्त में जो पावर बैलेंस है या जो माना जा रहा है कि नई विश्व व्यवस्था कैसी होगी उसमें भारत एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति में आकर खड़ा तो नहीं हो जाएगा इस ब्रिक्स के जरिए, या फिर जो नब्ज अमेरिका ने भारत की दबाई हुई है और भारत के प्रधानमंत्री सिवाय अमेरिका के अलावे किसी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। और इस बात का जिक्र देसी राजनीति में कहें तो अंदरूनी राजनीति को संभालने के लिए इस वक्त मोदी सरकार के सामने ब्रिक्स एक उपलब्धियों का पूरा फ्लावर पॉट है जिसके आश्रय वो मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दुनिया के ताकतवर देश हैं उनके बीच में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम ही चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। यानी हमारी डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई है, हमारी विदेश नीति फेल नहीं हुई है, हमारे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संबंधों में हम नतमस्तक किसी के सामने नहीं हुए हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार अपनी बात में भी कन्वे कर रहे हैं जो बैठक चल रही है, लेकिन जो अलग अलग देशों में सवाल है उसमें एक तरफ अगर रशिया है तो दूसरी तरफ ईरान है। ईरान इसलिए क्योंकि उसने खुले तौर पर डी डॉलराइजेशन का नाम इस आधार पे लिया कि नया ब्रिक्स बैंक देशों को।
1: द टाइम इज 8 PM। You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.